लाल कुल्हाड़ी, काली पहाड़ी, मोटा सेठ, लोहे का गेट, हो गई भोर, भागा चोर, नाचा मोर, मच गया शोर।

के फैंस उसे आधा रॉबिन हुड मानते हैं, क्योंकि वो अमीरों से लेता तो है पर गरीबों को देता कुछ नहीं।

0: उल्फत में ताज बने, ये भी तुम्हें याद होगा, मैं भी कुछ बनाऊंगा तेरे घर के सामने।
1: देखी।